श्री गणेशाय नमः। अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी स्थिरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य

0: कार्यालय
1: सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सजग विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।

0: 几干够慢去哦。
1: 哇，好快啊！
2: 我咩等等，
3: 他们会
2: 不掉？
1: 他都在吃饭了吧？啥？
4: 都是的。我明明的，可是的，这个学校嘛，
5: 还这里结婚了，结婚了，还这里结婚了，完蛋去！
6: 这社会没结白，我给他们啥也没说出去呀。ये बात तो उसने है ना भैया सब ही मैं आए रहा हूँ
1: अरे आए रहा बंदे में किसी पसीन का
6: अब पता पटीचा वाला नहीं है ना
1: अब पता पटीचा

0: समुदायको लागि सामुदायिक रेडियो जलजला एफएम 96.4 मेगाहर्ज।
1: पौड़ी रही।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।